इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुर्सवै तुम कहो, अपहृदय मोहि बचाव, सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सब करतार, मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन को आसंगरे, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो वर जाऊं सतम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतरे हमारे मारी है, आप हाथ है मुझे वर है, मरण काल का त्रास ने वर है, ऊजो सदा हमारे पछा, श्री हस्त जय जो करे और अच्छा, रख लियो मैं रखन हारे,

मन वांछित फल पावे सोई, दुख न दिसे व्याप्त कोई, अड़ल सुने गंग जो जाहि सुरस न पावई।

मोरी बगन सो। महाकाल कुवार हमारो मालो मैं किंकर थारो, अपना जान करो रखवार, वह गए की लाज विचार।

जाने अपना मुझे निवाज, आप करो हमारे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा।

सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग साध संगत जी, आप जी ने सौदा रह रहा साहब बाणी के जाप सरवण किए हैं। आप हूँ कीर्तन न जुड़ते हाँ हजूरी जाके भाई गुरविंदर सिंह जी समूह जथे पासो कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

श्री वाहिगुरु साहिब जी, श्री नानक परशोत्तम परम परावर नाथ, जुगर चरण माम बंदना, तर परमाथ, श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद, राम दास अर्जन गुरु बार श्री हर गोविंद, हरि राय हर कृष्ण गोर, तेग बहादुर चंद, दसवें गोविंद सिंह गुरु, नमो चरण अरविंद, जिसमें अमृत ज्ञान है, बाणक भगत वैराग, श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग, श्री गुर शब्द कमाई जिन, जीते पंच विकार, तेन संतन का वंदना, सिर चरणन पर तार, एकंकार सतगुरु तिह प्रसाद सच होए।

सकल कटा को दिवहदान करन कराव हर स्वामी सकल कटा के अंतर जामी अपनी गायत मित जान हो अपन संग प्रभ राती तुमरी उस्तत तुम दे हुए नान कौर न जान सको सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल करम सकल क्रिया मह उत्तम क्रिया सा संग धर्म तुम्हारे हृदया सकल उत्तम मह उत्तम पला हर को नाम जप हो जी सदा सकल बानी मह अमृत बानी हर को जस रसन बखानी सकल थान त्योह उत्तम थान नानक जिह काट बस हर नाम सलोक निर्गुण हर इया निया सो प्रभ सदा समैल जिन किया तिह जीत रख नानक ने भी नारष्टपति

सदा सदा इह पुरन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग गौड़ी संग्रह चाहे स्वा छोड़ दूर संग बचाए जो छन स्वास फिर कर मान जो होवन सो दूर प्राण छोड़ जायु तुस्का सराम कर संग सहाय दह पर हरा चंद्र लिप उतार तुह कर प्रीत भसम संग हो अंध कु मह पत तो बिकरा नानक काल हो प्रभ दया।

मिथ्या राज जोवन तन वार मिथ्या कंकुक विकरार मिथ्या रथ हस्तिया सब वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह मान मिथ्या सुप्रकृत कुमान असथेर भगत।

सलाम सनेह जिह प्रसाद तेरा उल्ला रह तो मां सुख पावे हर हर जह कहे तो जिह प्रसाद तेरे सगल क्षेत्र टापे मां शरण पारु ठाकुर प्रभु ताके जिह प्रसाद तुझ को ना पाहु जय मां सा सा सिमर प्रभु जी।

संग साधन वेद पटाम रखता रह। साधु के संग सुवत अनुपाव जह तन जीव सब को प्रसाव सा संग धर्म राय करे सेवा साधु के संग सुवत सुरत सा साधु के संग पाव पलायन सा संग अमृत मन गायन।

सागर संसार। ब्रह्म ज्ञान काई का रंग, ब्रह्म ज्ञान का बस, प्रभु संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार, ब्रह्म ज्ञान सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञान अहं बुद्ध त्यागत।

पंडित का उपदेश जाग जीवा। हर की कथा चरता बसास पंडित, फिर जो नया वेद प्राण समत बुझा मुगल, सुख मह जान सतूर, जहाँ वरना कदि उपदेश नानक पंडित का, सदा देह बीज मंत्र सर को ज्ञान।

ऑफिसर पे पाए कई गुड बात बिरख ने बजाय कई गुड पावन पानी बाय संतर कई कोट जी सब मंडल कई कोट सस्ती और सूर न किया तर कई कोट दीव दान इंद्र सर शतर सगर समग्री अपना सूत तार नानक जेह जिह पावे देस तेहन तार कई कोट राज सुधाम साधक कई कोट वीर प्राण समृत रसासत कई कोट किए रतन समुद्ध कई को नान प्रकार जन कई कोट किए चर जीव कई कोट गिरिमेर स्वर्ण हिवे कई कोट जाक किनर साज कई गुट भूत प्रेत सुग्र मृगाज सब दिन रह सब हृदय दूर नानका वल उतर हया पार पूर कई कोट पाताल के वस्त कई कोट नरक सुन वैस कई कोट जन्म जीव मरह कई कोट बाजोनी फिर है।

मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन तरन हार संतन दानन का बहर बहर अवतार पति संत का दुख नार जगट संत का दुख जमत नहीं छोटा संत का दुख न सुख सब जाय संत का दुख नर गुम पाय संत का दुख न बैद हो मलिन संत का दुख न सुबत हीन संत के हति का रख न कोय संत का दुख स्थान प्रष्ट हो संत कृपाल कृपा जी कर नानक संत संग नंद कबीर तारा संत के दुख ते

करत विचार, करत की मेत ना जान किया, करती की मेत ना जान किया। नानक विध पाव सो वरतिया, विस्मन विस्म पै विस्मय, जन बूझिया दिखाया स्वाद। प्रभु का रंग राज जान रहे, गुर का वचन पदार्थ रहे। संग तरह संसार, जन का शिव सुबुड़ पाएगी, जन का संग गले लागी।

कोय सर्व जिया कर रख सोई कह सोच कर हिर प्राणी जप नान प्रवर बारंबार बार कव जपिया भी अमृत हुमान तंत्र पिया।

सात गुर जिस हर नावन कुबैर गुर कबर जय सरुन धन जी अगदारू पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म ई कह आप नहीं कह परम सह सो सियान प्रया न जाइ नानक सगुर बुढ़ पाई पाई सफल दर्शन पीख तनीत पर सत चरण गात निर्मल जीत पीठ संग राम गुण रवि पार ब्रह्म पी दर गह गवि सुनकर वचन करुण आग हनि मन संतुखात्मपति आनि पूरा गुर किया जाक मंत्र अमृत दृढ़ पिखावे संत गुण बियंत कीमत नहीं पाई नान पावत मलाय देह भाई कुछ तत्नेक।

सर्व निरंतरी पसोय उद्भूत रव्या रूप रंग पय प्रकाश साधक संग राज रजना बिन कल धारी अनुभव नानक बिर हरि सरोक साधन जल बिन भजन विखे सगरी शहर हर नाम कमावना नानक जी हुतन सार अष्टपदी संत जना मिलकर विचार एक समना में आधार और उपाव समीत विसार हो अवर उपाव साब मीत विसार जन्म कमल रिद में हर तारो करम कारण सुब्र सम्राज दृढ़ कर गह हो नाम हर वाचिक धन संचह हो वह भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रख मन वाह सर्व रोग नार मिट जाय जिह तन कर चार कुंट उठ जावे सो तन हर सेवा दे उपाय वह जिह सुख का नित वांछा मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सुबह कह कर परिकरण सा सुबह।

का नाह प्रवेश जहि कहि कहि भगवंता तह कौन चिंत कहलाग चिंता जहाँ अपना पतिया रह कौन कथ कौन सुन निहार।

मनह बसार। तिस तैज अवर कहाँ पुजायु सब श्री निरंजन राय जी की जुग जाक सभाथ अंतर बह जन साथ गुण निधान बियंत उपानंद सदा बलहार। पूरन है पूरे ही दयाल सब प्रवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामि रहे उभया प्रत पाल जीवन बह पात जो जो रचियो सोत सहित आत यह पावत हलय मिलाय भगत करे हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मानिया करुणा नानक के जाने जन लागा हरि कह नाय तस की आस नम्र थी जाय शिव का सेवा बनाय कुंभुज परम पद पाई।

संवेल सा संवेल करुण आनंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम तात कर विचार दुर्लभ जी का कर उदार अमृत वचन अचुन गाय उपरा तरन गाय है स्वाभाव प्रभी का निरा मिटा ज्ञान बिन सा अंधेरा सन बुद्धि हृदय

रखनहारियाई निर्भाव जप सकल पाव मिटाय प्रभ कृपाति प्राणी छुटाय जय प्रभ राखत सनाहिं दुख नाम जपत मन होत सुख चिंता जाय मिटे अहंकार दिस जन का कोई न पहुँचन हार श्री उपर ठाठा गुरु सूरा नानक ताकि कार्य पूरा मात पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पीखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाय की अनूप सफल दर्शन सुंदर हारूप तन सिवा शिव प्रवान अंतर जमी पुर प्रदान जिस मन बस सोहत निहाल ताक निकनावत काल अमर पै अमर पद पाया सत्संग नैन कर दियाया सलोक ज्ञान अंजन कर दिया ज्ञान अंधिर विनाश हर कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु कर लगा मीठा सकल सिमिगरी एक सकट महन करंग नन दृष्टा ही नाव निध अमृत प्रभ का नाम दिही मैं सब विश्राम सोन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज समाद इन दिखिया जिसब दिखाई नानक जन सो जी पाई सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहे भगवंत तरन माहि आकाश पायल सर्वलोकुन प्रत पायल बैन तिन कर बतहै उपार ब्रह्म जैसी आज्ञा तस करम पावन पाण बसंत्र माहि चार कुंट दय दिशे समाहि दिह दिपेन नहि कोठा गुरु प्रसाद नन सुपाव वेद प्राण समृत मै दीख ससियर सूर न किया तरम ही बैन प्रभ सब बोलया बडूर न कबू डोल सर्व कलाकार किल मोल न पाया गुण है मोल

संतजन सुन सब भजन सर्व्यापी राम संग्रजन जिन जात तिसकी हरह सात भजन साधु सब कहत जो जो हो सो सुख बांध करम करा नार प्रभ जाने अंतर बसी बाहर की ओहि नायन को दर्शन दिशा मोही।

चार पदार्थ कमल प्रकाश सब के मद सकृति उदास सुंदर चतुर्थात का बीता समदृष्टि उपदृष्टिता

वेदं गुरुमुखरहया सुमाई गुरईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हाँ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा बिन भाणे के नाए करी जे तिसठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिला लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसुणी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चला सब कोए

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तव ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दात।

ओंकारम असंख नाव असंख थव गम अगम असंख लो असंख कह सुर पार हो अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुणगा

छंदोत्वा प्रसाद कथते के अशि दिशा के अभिज पिशा के अगन कर्म के अभंज कर्म के अभिज लोक के तिर शोक के अवतूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजन प्रभा के धर्म तुजा है के अशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगदन कृति है के क्षत्रम क्षत्रि है के ब्रह्म स्वरूप है के

गए बहन के अफगुल गुनाह है के शाहान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंत है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कलि है के सर्वं दलिंग है के सवत्र मान्य है के सवत्र दान्य है के सवत्र गौना है के सवत्र पावना है के सवत्र देश है के सवत्र पेश है के सवत्र राज्य है के सवत्र साज है के सवत्र दीन है के सवत्र लीन है के सवत्र जा हो के सवत्र पा हो के सवत्र देश है के सवत्र पेश है के सवत्र काल है के सवत्र पाल है के सवत्र हंता के सवत्र गंता के सवत्र पेखी के सवत्र पेखी के सवत्र काज है के सवत्र राज्य है के सवत्र सुख है के सवत्र भूख है के सवत्र त्राण है के सवत्र प्राण है के सवत्र देश है के सवत्र पेश है के सवत्र मान है सदैव प्रधान है के सब के सवत्र जाप्य है के सवत्र थाप्य है के सवत्र पान है के सवत्र मान है के सवत्र इंद्र है के सवत्र चंद्र है के सर्वं करीम है के परम फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमाम वजू है हमेशा सलाम है सलेक तुम दाम है गरीब से कस्ता है गरीब।

अन्न छज्जांगा सरंगा पांकु कुमां पार गात में उदार जल थल मंड दिस विश आ पांडो जल थल महंत दिस विश बे अंतन पव अनासर त्रित तत्तुरा स्वाजान बाहु एक सदा हुं।

जापना है। अकलन कृत सर्वा कृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्मा सर्वात्म है, आत्म बस है, जास के जास है, पूजा प्रयात छांदम।

दुकालं परणासि दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवें द्वै प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख फिर घर जोग जती के सू

बतायो साज कहूँ सुन रिहो सबै जिन प्रेम कियो तन ही प्रभ पायो काहूला पहन पूज तरियो सिर काहूला लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीश।

त्रय सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भर पूरे।

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

न होए। आपे आप निरंजन सोए जिन से व्यादन पाया मां नान गावी है गुणी निदान गावी है सुनिए मन रखिए पाओ दुख पारा सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रया समाई।

सच होवे, सो कहु टल गुर सेविए, अहनस सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। हो वैसे समी नूर अरसों कुरसों चटिए, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए।

पद दाता सुल्तान पूछा सुन बेनामा देखो राम तुम्हारे कामा। नामा सुल्तान ने बादला देखो तेरा हर बिचला रहा बिस्मिल गौ देव जीवाए नातर गर्दन मार उठाए। बादशाह सी क्यों होए बिस्मिल किया न जीवै कोय मेरा किया कछु न होए कर है आराम होए है सोए। बादशाह चढ़ियो अहंकार गाज हस्ती दीनों चमकार उदम करा नामे की म्याई। चोर राम की ना भज खुदाए ना हूं तेरा पुंगला ना तू मेरी माए पिंड पड़ै तो हर गुण गाए करा जिंद सुन की चोट नामा उपरा हर की ओट। काजी मुरला करे सलाम इन हिंदू मेरा मल्या मान बादशाह पे बेनती सुने हो। नामे सर पासो ना दे हो माल दे हो तो दो जग परो दीन छोड़ दुनिया को भरो। पावो बेड़ी हाथो ताल नामा गावै गुरु गोपाल गंगा जमन जो उल्टी बाया तो नामा हर करता रहे साख करी जा बीती सुनी। अजू ना आत्र पवन धनी पा खंतन बाज बजाए ला घर चढ़े गोबिंद आए ला। अपने भगत पर की प्रतपाल गर चढ़े आए गोपाल कहे ता धरन कोडी करो कहे ता लेखा रूपर धरो कहे ता मोई गऊ दिहो जीवाए सब कोई देखा पति आए। नामा प्राण मसेल मसेल गऊ दुहाई बछरा मेल दूधे दोहे जा मटकी भरी ले बादशाह किया कि धरी बादशाह महल में जाए। आओ घट की घट ला की आए काजी मुला बिनती फरमाए बाकी हिंदू मैं तेरी गाए। नामा कह सुनो बादशाह यो किस पतिया मुझा दिखाए इस पतिया का यह परवान सासील चलो सुल्तान नाम दे सब रहा समाए। मेरे हिंदू सब नामे पै जाए जो अब की बार न जी वह गाए ता नामदेव का पतिया जाए। नामे की कीर्त रही संसार भक्त ना दे उदरिया पार सगल कलेश निंदक भया खेद नामे नारायण ना ही भेद का पूजा जो गुरदेव तमला मुरार जो गुरदेव ता उतर पार जो गुरदेव ता बैकुंठ जा तरा जो गुरदेवता जीव तुम्हारा सत सत सत सत सत गुरदेव झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाओ। जो गुरदेवता नाम दिलावै जो गुरदेवता दह दिस्तावै जो गुरदेव पंच ते दूर जो गुरदेव ता मर बो झू जो गुरदेवता अमृत बानी जो गुरदेवता कथ कहानी जो गुरदेवता अमृत देहे जो गुरदेव नाम जप ले जो गुरदेव भव त्रै सूजै।

बताई, ऊहा जपिया केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम, सगल तत् मैं तत् ज्ञान, सर्ब ध्यान मैं एक ध्यान, हर कीर्तन मैं उत्तम धुना, नानक गुरमिल गाय गुनाम, संत महला पंजवा, जिस बोलत मुक्त होए, तिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस खरा दे जम कृष्णा कहै, जिसकी सेवा सब कुछ रहै, राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सरल काम, रहाव जिसकी धारे धरन आकाश, घर घर जिसका है प्रकाश, जिस सिमरत पथ पुनीत होए, अंतकाल फिर ना रोए, सगल धर्म मैं उत्तम धर्म, कर्म करतूत क्या ऊपर कर्म, जिसको चाहे स्वर नर देवन, संत बाकी लगो सेवा पुरख, जिस किया दान तिसको मिलया हर निदान, तिसकी गात मित कही न जाए, नानक जान हर हर त्याए, बसंत महला पंजवा, मन तन भीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलवे काटे साध संग, नाम जपियो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय, धारे सदा सदा हर जा सुना रहाओ।

संपत गरी कस संग न चालै समझ लेहि एक भगत नारायण होई संग कहो नानक भगति एक रंग बसंत महला नावा कहां भूलियो रे झूठे लोभ लाग कछ बिगड़ियो नाहन अजहू जाग रहाओ सम सुपन का एहो जग जान बिनसै सिन मैं साची मान संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर भगता ही मीत बार अंत की होए सहाय कहो नान गुणता की गाय बसंत महला पहला पदिया घर पहला दुतकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ नाम नहीं कीत नाम सा ग्रह देख भीत मनुआ डोलै चीत नीत जग सिंह चूती झूठ परी काम क्रोध बिक बजर भार नाम बिना कैसे गुणचार हाओ घर बालू का घूमन घेर बरकस बानी बुदबुदा हेर मातर बूंते धर चक पेर सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब

0: साधक संमुख उज्जल होत सा संगमल सगली खोत
1: साधक संग मिटाय अभिमान साधक संग प्रगट सो ज्ञान
0: साधक संग बुझे प्रभ नीरा सा संग सब होत नवीरा
1: साधक संग पाए